0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध कही भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी
5: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: कबू कापी रहीठ कबू पेन्सिल रहीठ कबू झोलै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठा कबू पेंसिल हेरा कई ठा कबू झोले फटा कई ठा बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गुर झोला आन लगाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का ट्रस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373 बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59
3: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
3: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
3: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 98-48-51-43-26 जमरापारी टीकापुर कैलाली
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरो शनिबार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त बाउ के पाउँछ त्यहाँ
5: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर भक्त राजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
6: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
7: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
4: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ
8: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
9: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
10: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
8: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 9844648673 र 9814680204

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगला दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: अहँ हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में आज से अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलन हुईटी सम्मेलन में सहभागी हुई संघ प्रदेश के सांसद के पदाधिकारी टीकापुर में पथरैया ओ कर्णाली लदिया के तटीय क्षेत्र में 32 सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति के बाढ़ के कृत्रिम नमूना अभ्यास 6300 बाल बालिका उकरण फलफूल के बिरुवा वितरण एसई परीक्षा में मजा नतीजा लन्ना जनजागृति मावी टीकापुर के शिक्षा खुकरण सम्मान टीकापुर में नगर युवा परिषद N2083 संबंधी छलफल हो एशियन गेम्स पुरूष क्रिकेट छनौट प्रतियोगिता में फाइनल में प्रवेश कलाक नेपाल ओमान संगे खेलना अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलन हुई लागल बा। अन्तरव्यवस्थापिका मंच के आयोजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के व्यवस्थापन में हुई लागल सम्मेलन कालसम चलना बा। सम्मेलन में प्रतिनिधि सभा के सभामुख उपसभामुख राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सातुथो प्रदेश के सभामुख उपसभामुख संघ प्रदेश के सांसद सचिवालय लगायत के सहभागिता रहना कहलबा। जे 24 गते काल घोषणा पत्र जारी करके सम्मेलन समापन करना कार्यक्रम तैयार करके सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के सभामुख भीम बहादुर भंडारी जानकारी दिले बाटै सम्मेलन के संचर के बिहान के प्रतिनिधि सभा के सभामुख दोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल के संयुक्त रूप में उद्घाटन करना कार्यक्रम रहलबा। उद्घाटन सत्र में सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के समेत सभामुख भीम बहादुर भंडारी से करना बाकलसै दुई दिन सम्मेलन में सहभागी हुन संघीय सांसद के सभामुख दोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल उपसभामुख रूबी कुमारी रौनियार पुस्तक राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष लीला कुमारी भंडारी टीकापुर पुगलबाट सम्मेलन के उद्घाटन समारोह है सभामुख अर्याल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष दाहाल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह से संबोधन करना कार्यक्रम रहलबा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी सुदूरपश्चिम प्रदेश के सांसद सचिवालय के सूचना अधिकारी युवराज जयशिकर बाटें। पथरैया और कर्णाली लदिया के तटीय क्षेत्र के 32 स्थान में बाढ़ के कृत्रिम नमूना अभ्यास करगिल बा। विश्व वातावरण दिवस के अवसर में कैलाली के टीकापुर जानकी गांव पालिका में बाढ़ के जोखिम रहल 32 समुदाय के बाढ़ के नमूना अभ्यास करके समुदाय सचेत करागिल हो। प्रैक्टिकल एक्शन बी ग्रुप हो स्थानीय पालिका के सहकार्य में स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति के नमूना अभ्यास करगिले हो। नमूना अभ्यास में 3 चरण में सतर्कता और चेतावनी तह के खतरा के तह में समेत आधारित करगिल बा। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 भरतापुर में 84 घर बाकलसे हरेक वर्ष बर्खा में यहां पथरैया लदिया के कारण बाढ़ के जोखिम रहना बाढ़ के प्रभावित हुकरण समेत बैठना के लाख दुई तले उच्च घर बाकलसे नमूना अभ्यास के क्रम में समुदाय में रहल बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपांगता रहल बाढ़ के कारण दुर्घटना में पड़ल हुकरण उद्धार करके लन्ना करगिल रह बाढ़ में अलसे समुदाय गठन होके खोज तथा उद्धार कार्यदल प्राथमिक उपचार कार्यदल के सक्रियता बढ़ागिल रह स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष फूलकुमारी चौधरी जैसे फिर नमूना अभ्यास करगिल बा सहभागी हुई बाट वस्तक बाढ़ के समय में फिर एक और जहन साथ देना अनुरोध करे बाट स्थानीय आशा देवी चौधरी से पथरैया लदिया में 5.3 फीट पानी पुगे खतरा तह पार होना हुई से 3 तह के सूचना अनुसार गांव में सकुजहान अभ्यास करागिल वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य

0: पूर्ण बहादुर नायक से बाढ़ के समय में पूर्व सूचना में विश्वास करना समय में सकु जहान सुरक्षित स्थान में सर्ना समुदाय सचेत हुई पन्ना बटोली बाट प्राक्टिकल एक्शन बी ग्रुप के कार्यक्रम में अधिकृत अंजु चौधरी दुई थो लडिया के तटीय क्षेत्र के मनैन बाढ़ के समय में सुरक्षित धरकलाक नमूना अभ्यास करागिल बा सतर्कता तह चेतावनी तह खतरा तह मलक ओर से कसी के सुरक्षित रहना कहके समुदाय सचेत कराइना वो तीन चरण के सूचना के आधार में कृत्रिम घटना अभ्यास करागिल बा अनिता चौधरी से भरतपुर में रहल सकु घर बाढ़ ओर से विस्थापित हुई रलक ओर से ई समय में नमूना अभ्यास करके सहज हुई बटवागिल बा टीकापुर में नगर युवा परिषद एन 2083 संबंधी छलफल तथा विचार आदान प्रदान करगिल बा टीकापुर में हुईलक छलफल में कार्यक्रम से क्षेत्र के सामाजिक अगुवा तथा सरकार वाला हुकरा सहभागिता रहल बाटे सहभागी हुकरा से नगर युवा परिषद एन के ढांचा कार्यक्षेत्र कोष खड़ा करना साथे कतरा सदस्य परिषद गठन करना कहना बारे में फिर छलफल हुई बा पहल चरण के छलफल में कुछ महत्वपूर्ण विषय में फिर टिप्पणी लैके टीकापुर नगर पालिका कानून शाखा प्रमुख केशर बहादुर थापा से यह थप गहिराई के अध्ययन करके समिति बना के कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ना बटोले बाट कार्यक्रम संचालन तथा सहजीकरण अरुण लोहार और निशांत काफले करल सरोज चपाई जानकारी दिले बाट खोजखर माए घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक को टोल भेला संचालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक को आर्थिक वर्ष 2083-84 में संचालन हुने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी भेला तहसील अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित गाउँ टोल र ब्लकका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। ब्लक नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 समितिपुर ज्योतिनगर दशघरुवा सतघरुवा राजीपुर विपतपुर दुर्गानगर एकतानगर र विशालनगर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान ज्योतिनगर आधारभूत विद्यालय ज्योतिनगर जेठ 23 गते बिहान 7:30 बजे ब्लक नम्बर 1, 2, 3, 14, 17, 18, 19, 20, 21 र शक्तिनगर शिवनगर एकतापुर बाढ़ी पीड़ित गणेशपुर तीनघरुवा भूपू कर्मचारी भूपू कमैया र चमेलीपुर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान टीकापुर कन्या आधारभूत विद्यालय ब्लक नम्बर 18 जेठ 23 गते दिउँसो 2:30 बजे ब्लक नम्बर 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23 र व्यवसाय क्षेत्रका लागि भेला हुने स्थान राधाकृष्ण मन्दिर ब्लक नम्बर 9 जेठ 24 गते बिहान 7:30 बजे ब्लक नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25 छेगरखैला र बनगाउँका तीनै पूर्वाको लागि भेला हुने स्थान साईमाट अगाडिको सार्वजनिक चोक ब्लक नम्बर 25 जेठ 24 गते दिउँसो 2:30 बजे टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वडा कार्यालय
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस् ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेडस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रदान गरेका सेवा, सम्पन्न गरेका काम, योजना र वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकोले तपाईँका गुनासा, प्रश्न वा सुझाव सहित तफसिलको मिति, स्थान र समयमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवालाहरू, सेवाग्राहीहरू, गैर सरकारी संस्था, वर्गर, नागरिक समाज, युवा, समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल जेठ 26 गते, समय दिउँसो 2 बजे, स्थान सुवर्णपुर स्थित कृषि भवन, जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय सुवर्णपुर।
0: जनजागृति मावि टिकापुरमा शिक्षक हुक्रन सम्मान कर्गिलबा इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति समिति से विद्यालयमा मावि शिक्षक हुक्रन सम्मान कर्गिले खो कक्षा 10 केएसई परीक्षामा विद्यालय से मजा नतिजा लानल कहती शिक्षक हुक्रन सम्मान कर्गिल आयोजक से बतैत्याइलबा। शैक्षिक सत्र 2082 जनजागृति मावि सीतापुर से एसईमा 69 जाने परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी रहलकमा 52 जाने परीक्षार्थी उत्तीर्ण होइलबाटै सम्मान कार्यक्रममा सहभागी टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 के वार्ड अध्यक्ष दीपक चौधरी, विद्यार्थी अभिभावक हुक्रा मेहनत से समेत विद्यालय के मजा नतिजा लनलक कहती शिक्षक हुक्रन प्रोत्साहन गर्न मजा काम रहल बतोइलेबाटै। इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति समितिका अध्यक्ष पूर्व ऊर्जा राज्य मन्त्री चनर सिंह भट्टराई से विद्यार्थी हुक्रन पहिले से नै छात्रवृत्ति देतीको यी वर्ष शिक्षक हुक्रन प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान करल बटवागिल्बा। शिक्षक हिगमन्त बुढासे सञ्चालन करल कार्यक्रममा स्वागत पूर्व प्रधान अध्यापक ललिता शाही करल रहे। कैलालीमा 6300 बाल बालिका हुक्रन फलफूलके बिरूवा वितरण कर्गिल्बा। विश्व वातावरण दिवस के अवसरमा तमाम कार्यक्रम करके बाल बालिका हुक्रन वातावरण संरक्षण के बारे में जानकारी कराइनके साथै फलफूल के बिरूवा वितरण करगिले खो। ओल्विजन इन्टरनेशनल नेपाल के सहयोगमा दिगु विकास समाज भजनी के आयोजना हो। स्थानीय सरकार समन्वयमा बाल समृद्धि एकीकृत विकास केला हाटुमालो परियोजना अन्तर्गत कैलाली के 5 पालिकामा 6300 फलफूल के बिरूवा वितरण करगिले खो। ओल्विजनमा दर्तरलक बाल बालिका हुक्रन के पोषण सुधार हो, जलवायु परिवर्तनमा असर न्यूनीकरणमा सहयोग हुए कहिके फलफूल के बिरूवा वितरण करल बटागिल्बा। कैलाली के टिकापुर भजनी घोड़ाघोरी गौरीगंगा नगरपालिका हो। कैलाली गाउँपालिकामा 6300 बाल बालिका हुक्रन आप लिची ओ कागती के बिरूवा वितरण करल ओल्विजन इन्टरनेशनल नेपाल के जिल्ला संयोजक मंगल शाह जानकारी कराइले बाटे। जलवायु परिवर्तनमा तमाम खालके असर देखिलक ओर्से यो अवस्थामा जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण गर्न बाल कल्याण से लैके बाल बालिका हुक्रन के प्रकृति चिन्हैना हो प्रकृति संरक्षणमा सक्रिय करैनकलाग बिरूवा वितरण कराल दिगु विकास समाज भजनी के सामाजिक परिचालक खुशीराम चौधरी बटोले बाटै। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 के कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार चौधरी बाल बालिका हुक्रन फलफूल के बिरूवा वितरण करबेर ढेर फाइदा हुना करल बटोले बाटै। अब हुइलक बिरूवा मस्ती जैना हो जमीन बाँझो रति जैल कोर्से फलफूल चराचुरुङ्गी मनैन दुनु जहन समेत फाइदाजनक हुना हो फल फलमा खैना हो आमदानी दुनु हुना रल कोर्से काम मजा रहल बटोले बाटै। वार्ड नम्बर 8 हुइलक बिरूवा वितरण कार्यक्रममा वाडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुला मानव गतिविधि फोहोर व्यवस्थापन के अभाव तथा उद्योग कल कारखाना से वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ति रहला कोर्से वातावरण संरक्षणमा सबको जाने ध्यान दे पर्ना बटोले बाटे। दिगु विकास समाज भजनी के अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत राजकुमार चौधरी बिरूवा संरक्षण करके भविष्यमा आर्थिक वातावरणीय दुनू हिसाब से लाभ ले सकना बटोले बाटे। वार्ड नम्बर 8 के कार्यक्रममा विकासका लागि युवा एकबद्धता या टनगढ़ीकी सामुदायिक परिचालक रतनलाल चौधरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रहे। बिरूवा पैलक बाल बालिका हुक्रन आपन नाउँमा मिलल बिरूवा अपना लगैना संरक्षण गर्ना हो फरल पाछे खाइपैना रल कोर्से बालिका अञ्जली चौधरी घरमा यी आगे फेर लिचिके बिरूवा नै रहेन पाइल पाछे बिरुवा लगैना हो, बिरुवा के हरियाली हुइना हो, खैना के लाग्फे मजा हुइना बाद बुझगिल अञ्जली बटोले बाटे। अभिभावक विपना चौधरी बच्चा हुकरन के नाम में मिलक लिची की बिरुवा बाँझ जमीन में लगैना हो, मजा सेहार करना बिरुवा के वातावरण और स्वास्थ्य के लाग मजा हुइना बटोइटी दिवस के अवसर में टीकापुर नगर पालिका से नगर पालिका परिसर में फिर वृक्षारोपण सरसफाई करल बा। मुलुकमा हाल उपल्लो वायुमण्डल मरलक न्यून चापीय क्षेत्र के रेखा तथा स्थानीय वायु के आंशिक प्रभाव प्रदेश ओर से देश के तमाम क्षेत्र में मौसम बदलना के साथ कयों स्थान में वर्षा के संभावना बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल कोसी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश लगायत के देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान तथा तराई भूभाग में एक दुई स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित के मध्यम खाल के वर्षा हिमपात के संभावना रहलबा। कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के कुछ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में हल्का से लेकर मध्यम वर्षा होती रहल महाशाखा से जनायलबा। उसीगर के मधेश बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ स्थान में तातो लहर चलना संभावना बा। संचर के रात के कोसी प्रदेश सहित के देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बाकलसे मधेश प्रदेश बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक बदलना बाकलसे बाकी तराई भूभाग में मुख्यतया मौसम सफल रहना बा। महाशाखा से आज दोपहर के कोसी प्रदेश सहित के देश के हिमालय तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना तथा कुछ तराई भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बाकलसे बागमती और गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में हल्का हिमपात वर्षा के संभावना बा। तातु लहर के प्रभाव से बचना दोपहर के समय में सेकटसम घर भीतर रहना हो, जूर ठाव में बैठना, अनावश्यक रूप में घाम बाहर नहीं निकलना, हल्का तथा सूती के कपड़ा लगैना, निकले बेर टोपी वा छाता समेत प्रयोग करना तथा प्रशस्त मात्रा में पानी झोल पदार्थ सेवन करना वैज्ञानिक हुकरा सुझाव देले बाटे। तराई क्षेत्र में तापक्रम बढ़ना रलकोसे आवश्यक सतर्कता अपनाइना तथा मौसमविद हुकरण के सुझाव के पालना करना महाशाखा से सर्वसाधारण हुकरण अनुरोध करल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम। काली कर्णाली सांस्कृतिक समाज को साधारण सभा तथा नेौला खेल कार्यक्रम हुने बारे को सूचना। काली कर्णाली सांस्कृतिक समाज टीकापुर कैलाली को वार्षिक उत्सव समारोह तथा लोक सांस्कृतिक नेौला खेल कार्यक्रम तपसिल को मिति स्थान र समय में हुने भएकाले सम्पूर्ण आजीवन सदस्य साधारण सदस्य तथा संस्कृति प्रेमी को उपस्थिति का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। पहिलो वार्षिक उत्सव तथा दोस्रो साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 23 गते दिउँसो 3 बजे। सभा संचालन हुने स्थान टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ब्लक नम्बर 15 स्थित खुला स्थल। नम्रता जैसी दीपा साउट लगायतका कलाकारहरूको उपस्थितिमा नेउला खेलको समय बेलुकी 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म। दोस्रो दिन लोक नेउला सांस्कृतिक खेल सञ्चालन हुने मिति 2083 जेठ 24 गते समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। स्थान ब्लक नम्बर 15 स्थित खुला स्थल। अध्यक्ष पदम बहादुर थापा छेत्री काली कर्णाली सांस्कृतिक समाज टीकापुर।
3: जानकी गाउँपालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
4: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरी गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदल हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट श्रममा नलगाउन, धूम्रपान, मद्यपान, स्वास्थ्यजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न हुन र अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराई नियमित पठन पाठन कार्यमा संलग्न गर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
3: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका समिति।
5: कर्णाली नमुना मावि टीका पूर्वक शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
4: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 कानून, होटल म्यानेजमेन्ट, मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
4: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरका विशेषताहरू:
5: फराकिला कक्षाहरू,
4: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
4: खेलकुद सुविधा,
5: कम्प्युटर शिक्षा,
4: स्वच्छ पिउने पानी,
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
4: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584-24167।
5: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
6: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकलमा जाइस् त?
7: मै नै जाइ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
6: उहे मारे जो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाइम।
8: याद गर्बी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
9: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
8: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98600-71024 ओ 98046-77417।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। प्रतिनिधि सभा के सभामुख दोल प्रसाद अर्याल सहित की टोली कंचनपुर के दोधारा चांदनी में निर्माण हुई निर्माधीन सुक्खा बन्दरगाह के काम के प्रगति के विषयमा जानकारी लेहलबाटै वहाँका सभामुख अर्यालो राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद तहालसे कञ्चनपुर के तमाम क्षेत्र के अवलोकन के क्रममा दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह के प्रगति के विषयमा जानकारी लेहलके हुए। निर्माधीन सुक्खा बन्दरगाह के नेपाल की ओर से प्रतिनिधि एवं कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष तेज बहादुर चन्दा से सभामुख सहित की टोली है निर्माण के विषय में अवगत करागिल रहकल से सुखर बंदर ग्रह के साथ बांसगांव विमानस्थल के स्तर उन्नति और दैजी औद्योगिक क्षेत्र के विषय में फिर जानकारी देहल चंद जानकारी दिए बाट वर्व सभामुख अर्याल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष संघे उपसभामुख रूबी कुमारी और राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष लीला कुमारी भंडारी लगायत रह वहां उनका कैलाली के टीकापुर में हुईना व्यस्तपिका सम्मेलन में सहभागी केला टिकापुर आपुगलबाट भारत सरकार के प्राविधिक को आर्थिक सहयोगमा निर्माधीन सुक्खा बन्दरगाह के प्रखाल निर्माण अवसर के आवास निर्माण के साथ ही मलेरिया समेत नालामा पुल निर्माण लगायत के काम हुईती रहल बाकल से 2,37,00,00,000 भारतीय रूपियामा निर्माण हुईती रहल सुक्खा बन्दरगाह 30 महीना भीतर सम्पन्न हुन करके सहमति हुई बा। निर्माण कंपनी के अनुसार सुक्खा बंदरगाह के हालसम के 18% प्रगति देख पड़ल बा। कलश से बंदरगाह निर्माण के लाख दो धारा चांदनी नगर पालिका एक स्थित के गौरी शंकर सामुदायिक बनुवामा 1705 रूख कटानी हुइलो बाकलसे ऊ बन्दरगाह निर्माण केलाक नेपाल सरकार हो भारत सरकार बीच सन् 2023 जून 1 तारीकमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुइल रह बन्दरगाह निर्माण केलाक प्रयोग हुइना 42.36 हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईठो गोदाम क्वारेन्टाइन अस्तका भन्सार चेक जाँच अस्तका इमिग्रेशन सुख र समय सुरक्षा भवन लगायतको पूर्वाधार निर्माण हुन कहलबा ओ एसियन गेम्स पुरूष क्रिकेट छनौट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश कलाक नेपाल ओमानसँग खेल्न हुलबा शुक्रबार हुल खेलमा हङकङ हे समेत चाकिल हार समेत हङकङके चाकिल हार बेहोर्ती समूह बी के उपविजेता बनल ओमान से अटवार के हुईना पहिल सेमीफाइनल में नेपाल के सामना कर पर्न बा ओमान नेपाल बीच के सेमीफाइनल में समेत खेल अटवार के बिहान के 7:15 बजे हुईना कहलबा नेपाल आपन समूह में पराजित रहती समूह विजेता के रूप में बा कलश समूह में रहल नेपाल चीन ओ मलेसिया संघके चाकिल अन्तर से जीत निकालल बा कलसे नेपाल ओमान तथा दोस्रो सेमीफाइनलमा खेलकलक हङकङ ओ मलेसिया से समेत सेप्टेम्बरमा जापानमा हुइन एसियाली खेलकुदके पुरूष क्रिकेट केलाक छनौट हुसेकल बा कलसे एसियाली खेलकुदमा पुरूष क्रिकेटमा भारत पाकिस्तान बंगलादेश श्रीलंका अफगानिस्तान ओ जापान यी आगे नै छनौट हुसेकल बा थै यह समाचार संगे खोज खबर वाइल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर में चलते हल अंतर व्यवस्थापिका सम्मेलन हुईटी सम्मेलन में सहभागी हुईना संघ प्रदेश के सांसद के पदाधिकारी टीकापुर में पथरिया और कर्णाली नदिया के तटीय क्षेत्र के 32 समुदाय विपद व्यवस्थापन समिति में बाढ़ के कृत्रिम अभ्यास नमूना 6300 बाल बालिका हुकरण फलफूल के बिरूआ वितरण एसई परीक्षा में मतन मजा नतीजा लन्न जनजागृति मावी टीकापुर के शिक्षक हुकरण सम्मान टीकापुर के नगर युवा परिषद एन 2083 ऊपर छलफल ओ एशियन गेम्स में पुरूष क्रिकेट छनौट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश केलक नेपाल ओमान संगे खेलना लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनते विराम राम।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
4: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
5: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26
3: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाटी?
1: ले ले ठीक है बा, चल हाली भात वट खाई और जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गरगहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर, प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन सानी के गौर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261।

0: बुका पिरै ठक बु पेन्सिल रै ठक बु झलै फटाका आजि ठक का कना हो बाबा के ओष्टपाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठक बु पेन्सिल हेरा कै ठक बु झोलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रडगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिरै ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला दस काटस बाटिन ई बुढो ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आनस याक ठुइ
1: ल्या ल्या मैं अब भी जेबू रतगैया झोला उद्योग में
2: रतगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: आई हो बड्डो घर कहिया सीध जाइबो पाछा से शुरू करल मने घर सीध जा सकल।
1: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरू ना पट्टा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98484326।
6: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: ए रुक रुक रुक
5: के भयो किन कराएको यस्तो
4: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
6: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
5: हो र
4: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
7: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 1-2-3 हास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि

0: सर्पदंश अथवा साँपनको कटाईमसे बाँचो साँपनको कटाईमसे हुइसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषयमा आम संचार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश। नमस्कार, सर्पदंश से हुइसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरूद्ध जनचेतना जगेना उद्देश्य लेलक अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा अपना स्वागत बा मई पुष्पा। रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश का आज श्रृंखला में हम विज्ञ व्यक्ति हुकन से अन्तर्क्रियात्मक छलफल करने बाटी। आज यी कार्यक्रम में हम वातावरण में सापन का महत्व, बदलती गैलक पर्यावरण ले साप जाति में पर्लक असर, नेपाल सरकार वन मंत्रालय साप संबंधी करलक कामक विवरण का संग स्थानीय सरकार सर्पदंश कार्यक्रम कसी का संचालन करलबा कना विषय में चर्चा करने बाटी। मानवो साँपक बीचक द्वन्द काकर हुइठा वाकर न्यूनीकरण कसिक करना ओ यी दुई बीचक सह अस्तित्व कसिक कायम करना कना विषयमा फे बातचीत गर्ने बाटी। ओ याकरसँग सर्पदंशक रोकथाम कलाक रोटरी जनचेतनामूलक अभियान सहित और बातचीत फे गर्ने बाटी। आई कार्यक्रमको शुरूआत गरी हाम्रा विज्ञ व्यक्तित्व हुकनक पूरा परिचय मसे।
1: मेरो नाम चाहिँ सपना पाठक हो। म वन तथा भू संसाधन विभागमा चाहिँ वन अधिकृतको रूपमा काम गर्छु। मैले काम गरेको चाहिँ 30 वर्षभन्दा नि माथि भइसक्यो।
2: मेरो नाम शशाङ्क पौडेल हो। म डब्ल्युएलएफ नेपालमा काम गर्छु। खास गरी मैले काम गर्ने भनेको चाहिँ वन्यजन्तु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयहरूमा खास गरी काम गर्छु।
3: हजुर नमस्कार, मेरो नाम निर्मल रिजाल, म रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनको निवर्तमान अध्यक्ष। अहिले म युनिभर्सिटीमा पढाउनुका साथ साथै म सोसियल एक्टिभिटिजहरूमा पनि धेरै रहन्छु।
0: नमस्ते, अपनाहना स्वागत बा यी रेडियो कार्यक्रममा। कार्यक्रमको शुरूआतमा मै शशाङ्क जीहना पुछ चाहटु, डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपाल साँपनको संरक्षण गर्न काममा कसिको भूमिका निर्वाह गरसेकी, स्पेसली रोटरी से याकर कसिको साझेदारी गरसेक जाई, अपनाहना नेपालका सर्वदंशक विषयमा थाहा जो बा याकर विषयमा डान्से बता दिन।
2: डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालले चाहिँ लामो समय
4: डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपाल नम्बा समस्या तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती लड्यासी पश्चिम कञ्चनपुरसम्म हाम्रो संरक्षित क्षेत्र हो। संरक्षित क्षेत्र से बाहर फे वन्यजन्तु हुकन संरक्षण और अध्ययन अनुसन्धान का काम समुदाय से मिलकर ढ्यूर मिरिक काम कटी बाटी। यही में खास कर हमार बड़ा प्रजाति हुकन संरक्षण करना कार्यक्रम हुई से फे और ढ्यूर कार्यक्रम ले करबेर और छोट प्रजाति और सरीसृप जस्त आज स्थापन के विषय में बात बटुटी बाटी वही में फे पुगल बा। खास काम वन्यजन्तु न वासस्थान व्यवस्थापन का बात हुईलक वो वन्यजन्तु हुकन मनई रिस उठेना मेरे काम करना द्वंद्व क्रम में मार देना जैसे काम कम करकला बैठा वकर संग संग खोलवा नरवा लड्या सिमसार क्षेत्र हन सरसफाई गर्न ऊ स्वस्थ

0: अछिन देव महिना उबाट बड़ा अचम्म लागल हमारे एरिया काकर असिन हुई कनाबाट वहां को खाँ रहे उबाट वहीं एकदम चाकलक टिक लागल
1: पैसिनो कलेसे वही से आर्थिक में फिर असर पर्न रही
0: आर्थिक रूप में प्रभाव पर्न रहे ऊ एक ठो बात हुई दोसर बात जलवायु परिवर्तन में सापन का गतिविधि कसिक असर पठा कलसे काकर कलसे हरपेटो फोना जटा थे घसोर लाख खनिंगना टाटो छाप अलसे ढेर सक्रिय होना जिनवार भीतर हुकंट जलवायु परिवर्तन का सूचक रूप में लेठी नई हुकनक जोन पारिस्थितिक कैलेंडर जोन बाटन ऊ अनुसार हुकनक कैलेंडर फरक पट्टी बिलवा कलसे हुईपर्ना बेला में से फरक पट्टी बिलवा कलसे ऊ तापक्रम के कारण कुछ घटना व कुछ भरना बिठा सक्रिय होना समय नम्मा या छोटी होना ओसी को हुईटीबा कलश वहाँ कुछ असर हुईटीबा कना एक ठो मुख्य सूचक हो अब हमारे ई बर्ड टिकल परिवेश मत टमणमय लडेक बाट बढ़ेनु तापक्रम ब्रह टिकल कलश हिंदू पगलना बिठा ऊ हुई कलश पानी बहना पानी बहरना में फरक पड़ना हुई पानी बाहर कलश जीव जुआर हुकनक नेंगना घूमना फिर बरलना हुई हुकनक आवश्यकता फिर बहरना हुई हुकनक लड़का जर्मिना समय आरा सही समय में फुटना नि फुटना फरक पड़ना हुईठा हुकनक संख्या घटना बहरना हुईठा कटरापय प्रजाति मत तापक्रम का कारण मुसरवा बनना कि मुसरिया बनना प्रक्रिया में फिर तापक्रम ने फरक पठा कटरा तापक्रम हुई कलश मुसरवा निकलना कटरा तापक्रम हुई कलश मुसरिया बनना हुई था हमारा अब जो सापन का बाट बटी बाटी इधर जलवायु परिवर्तन एक ठोस सूचक जो मान पड़ता
2: वास्तव में भो क्लाइमेट चेंज को इंडिकेटर स्पीसीज
1: अपना जौन टमना कली मनाई ओ जनावर हुकन बीच डोन्ना बढ़ना बाट ओसिन कौनो उदाहरण बा प्रत्यक्ष कहाँ कैसी खुल रह कौनो उदाहरण देहे सिक्दी
2: यस्तो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ मान्छेले बुझेर त होइन
0: हिमा कसिन हुई ठाकुर मनै बुझबुझकट नाही नै महिनाक उपर आक्रमण हुई मनै अपनिहान असुरक्षित महसुस गर्दा कलसी रिस उठ्न आक्रमण गर्न उट स्वाभाविक हुई जस्तो हाम्रो गाउँ ठाउँमा जाइबे जस्तो कहीँ सर्प काटल कलसी उही मर्ना सेफे सर्प हुन चिन्ह परल कि खन काकर कि बिरो कराए गेलसे डाक्टर हुन देखाइ पर्न हुई कारणले मार्दिन बाट हुई दोसर बात गाउँ ठाउँमा घटना घटस्याकल कलसी सर्प अडिक्टिक ओहो हेर्ना हेराइ नकारात्मक भएकी ठा उही कलसी उही प्रतिकार गर्न कि खन उही न मर्ना उसिन मेरी वही है ना इकोलॉजिकली भाषा में कहवे प्रतिशोधात्मक हत्या के खाना कटी हमारा उ मेरी समस्या सांपन का मठियुर बात
2: मैडम लाई प्रश्न करे थे
1: मेरे मन प्रश्न करनो उन्हीं से संबंधित उ जोन प्रतिशोधात्मक हत्या करना जोन बा उ अपना बचक लाग मरना खाना बात बाजे उ जनचेतनक अभाव ले फे हुई वही में मैडम का कार आई बा हमारा जनचेतना कसिक बढ़ाई सीख जाये
3: इसमें मैं एउटा सानो कुरा भन्न चाहे जस्तो
4: एक ठो बात कह चाहत एक छो मई फिल्ड भिजिट में जैट रन हूँ जैटी जैटी एक ठो सपा डेक पड़ल हुआ सपा डेक पड़ल डगरी में एकजना सात आठ वर्ष का लड़का थे अपन दाई से जैटी रहा तब ऊ लड़का अपन दाई से का कल कल से हमन काटी टोल का मन बलाई टोल का सकु मन मिलख ई सब पहाड़ मारिक कहल काहे मतलब का कल से सपा डेक टिकी मार पर्था करना सोचाई ऊ लड़का दिमाग में बाटिन कल से उठ हमार सकु लड़कनक सोचाई में बाटी नीट उठ कल से हमारा शुरुआत कहाँ से कर पड़ल कल से घर में से कर पड़ल यही न बचाई पर्था कई खतरा महसूस तो हुई था आग अपन सपा डेक बोट डर लगता का सपा हो बिशा हुई कल से काटी मुझे भी करना डर लगता काट डाली तो फिर करना सोचो निजे की हमारा फर्स्ट मत अपना ही है ना बचाई खोजती नहीं था हमारा मार विचार में बिगे होकर रल से फिर रात खर देख सकल से देखती टीटा नीचे न से थी नीटा वाकर तो फोन का हेर का वाकर मोटाई कपार कसिन बाटी पूछे कसिन बाटी आंखी जीप निकले ना तरी का हेर का सब कुछ चीज हेर ही कल से बल्ल ई संपा बिखानी हो कई कहीं ही बिगे होकर फिर एक ठो सामान्य मन हो कर हेरना हो कल से शाम देख कर डरेना वो ही है ना मार देना स्वाभाविक हो वो मानवीय स्वभाव हो मन या यही है ना बिखा जानख या कल पृथ्वी जोगे नाम भारी महत्व बाटी नहीं है मारटु अथवा पर्यावरणीय चक्र बिगाड़ कई खनि हो ई अपन भित्र से आयल अपन प्रतिरक्षा करक लाख हो ओहर से करा बाट बा ले रौसी फिर हो भारी करा बाट हो सपा कटी की कौन कौन मनाए तो ये एलर्जी हुईटन ऊ वहाँ सपा देख लसी यहाँ एलर्जी हुईटन डॉक्टर साहब का नी बात था हुई ढेर मेरी बात बा ओहर से हमार कौनो ग्रामीण भेद में सांप मार के खेत अथवा सपा डेप्टी की मर थकना नहीं हो सब कुछ 3 करोड़ नेपाली के दिमाग में ऊ हो बा रात का अंधार में न्यांग वेद नम्बा कुछ देखल डाबल चुस्त कुछ गारा में गरल कल से दे मही सपा काट लीजिए कना शंका लग था दिमाग में जो हमार ऊ बैठल बा एक घड़ी हेरी डॉक्टर थे पास जेबी कह फिर ऊ नहीं मानत आजकल एकदम बिसारी खाल मन में तो छोटी कुछ बात हुई थी कि हार्ट अटैक हार्ट फेल हुई था सांप कना छोटी हो तर मनैनक में एकदम डर पैदा करना
3: डर फिल गर्ने कुरा हो
2: क्या
1: डरका कारण अब जाउन मैडम बटै नै ऊ अपन प्रतिरक्षा करेक लाग मर्ना ओर लग्ठा नै ससाङ जी केहेन फे उहे प्रश्न ऊ सप फेट प्रतिरक्षा करेक लाग त ऐना हो मही हन मनै कुछ बिगार कर लग्न कैख ऐना त हो नै त उफे खोज खोज के मै कटम कैख ऐना त नि होइन
2: हामीले यो जुन मानव वन्यजन्तु
0: हाम्रो जुन मानव वन्यजन्तु दण्डक बाटबाट भेटे हाम्रो अक्षर दण्डकै कक्ष तर अक्षर कबु कबु कहाँ बैठाकलाई यही न आब हाम्रो सह अस्तित्व वा असमदारी कना शब्द हान तर ढिहुर मूलधारमा ल्याउन पर्न आएछ डेप पठाएर काक्र कलसी दण्ड कलसी त दण्डमा रहन दुनु पक्षी हान मै दण्डमा बाटो कना ठाँ र तर मानव हो वन्यजन्तु केसबाट वन्यजन्तु हुन त यी दण्ड हो अथवा यी झगडा हो कना बाटो होइन त ठानी र टिन उता आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा करकला चरकला खान लाग अथवा प्रजनन करकला न होइन हो वर्षे कुनो फिल जिनवार मनै आक्रमण गर्न कलक आफ्न प्रतिरक्षाको लागि जो गर्न हो जब होइन खतराको महसुस हुन्छ जस्तो साँपनको केसमा हेरि कटरा भए 20 निछोडक सुक्खा कटाएर था साँपनको हरेक फेरा बिक्ट निछोड रहट ऊ स्याकलसम्म आफ्नो प्रतिरक्षा कसिक गर सकि था ओसेको गर्न हो अन्तिम विकल्प कलक त ऊ आफ्नो प्रतिरक्षा करकला आफन जौन हतियार बाटिस ऊ प्रयोग गरे हो तर औरो जिनवार हो हमारमा फरक का करसे हाम्रो कुनो निर्णय लिनासे पहिला कुछ स्वास्थ्य त सिठी जे हो यीमै करम कना ओ कैडना बीचको जुन ग्याप बा ऊ ग्यापमा हाम्रो नाही असिन हो कैखन डान्से सोचली कलसित समस्या त कम कर सक्दै कना आश लागत महिन ओही व्यवहार परिवर्तनको जुन बाट बा यही न हाम्रो एक ठो कमराको समूहको रूपमा नि हेर्कन यही न समूह किट्या छ एक ठो मनया का गर्न परिवार का गर्न समुदाय का गर्न किनको लेभलमा हाम्रो सोचली हो ऊ अनुसारको सन्देश बनेलसे वाकर प्रभावकारिता फे मजा हुई कना आश लागत महिन
2: मेसेज पनि बनायो भने सायद त्यसको अलिकति पेनेट्रेसन पनि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई
5: अब हाम्रो सुन्टीबाटी सर्पदंश सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश
6: आज हामीसँग बातचितमाबाट श्री शशांक पौडेल वन मन्त्रालय वन अधिकृत श्री सबनम पाठ तथा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका पहिलो अध्यक्ष एवं संचारविद डाक्टर निर्मल रिजाल
5: शशांक जी अब तिनठो लेभलका जुन बाट बटुली जे उहीमा आफ्नो कुनै सन्देशबाट ऊ तिनियो लेभल हन घर व्यक्ति वा समुदाय हन
2: व्यक्तिले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने सबै सर्प
0: व्यक्ति चाहिँ कहाँ बुझ परल कलसे सक्कु साँप बिखा हानेर त सक्कु साँप मारे डाँडा पर्न जरुरी नि रह सबसे पहिला उबाट व्यक्ति बुझल कलसे सबसे पहिला काम निमिना भयो घर परिवारक मनी फे एक औरजन बलगरसे फैलाइ परल सबको जन यी बाट बुझ परल ओ समाज बन एक ठो मेरिक सर्पदंश सम्बन्धी हाम्रो पूर्व तयारी कहाँबाट घर परिवारमा फे पूर्व तयारी कहाँबाट घर परिवारमा फे हेर्दा हो कलसे हाम्रो विपदको बाट बटी थि हाम्रो बराबर विपदको बाट बटी थि तर खास गरी हेर्दा हो कलसे मानव वन्यजन्तु द्वन्द ओ सर्पदंश फे पोइन्टको हिसाबले हेर्न कसै इफे डिजास्टर हो नि त क्युमुलेटिभ हिसाबमा हेर्न हो कसै त यी त भारी भने त यी विपक्ष हाम्रो कसरी लड्न हो त कना विषयमा सामुदायिक स्तरमा योजना बनाएर अथवा के हो न साँप दस्ता कसै का गर्न त कसरी तयारी भए कहाँ जैन कसरी गर्न उबेला स्वयंसेवक खुख के जैन उनीहरूलाई सेवा र के जैन केही हो न सम्पर्क गर्न गाडी कहाँ बा एम्बुलेन्स कहाँ बा कना मिरिक समुदाय लेभलमा कुछ पूर्व तयारी होइन हो कसै जीवन जोगिन प्रयास सहज रूपमा गर सक्छ
1: कलेसे रणनीतिक हिसाबले तयार गरिसक नहो कलेसे याकार सामना सहजै गरिसक जाए कनबाट हन हेरेबर मै म्याडम हन पुछे चाहटु अब स्थानीय सरकार हुक्र प्रभावकारी अथवा कही अधिकारके हिसाबले फे उहाँ हुक्र अधिकार दि गैलक अवस्थामा स्थानीय सरकार हुक्रे फे सर्वदंश सम्बन्धी एक ठो मुद्दा उठैन भ्याला हुइलक हो उहाँ हुक्र कर्तीबाट निहुइट अथवा काकर पर्न हो कना आश लागत काकर कलेसे उहाँ जौन रणनीतिक हिसाबले समुदाय स्तरमा संगठित भएका जौन काम कर पर्न बात पटोइला ऊ कलक सरकार सहयोग गर्न हो
3: यसमा चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ के छ भने जस्तो सरकार
6: मरेहीमा कनाकाबा कलसे अब तीन तहको सरकार भने अब यी सर्पदंश सम्बन्धी काम गरेर पर्न कलक मुख्य भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको हो स्थानीय सरकार जो हेर्न कसैको साँपनको कटाइमा से बस्न सपट दस दारल कलसी कहाँ जैन टोलमा कहाँ कहाँ ढलाइ उठ वाकर टाइम रहट फे ओठा समयसम्म वाकर उपचार गर निषेध गेल कलसे त वाकर ज्यान फे जाइसा दिशा रहल कलसी ऊ बाट फे बुझाइ परन सबसे पहिला त पालिकामा नगरको वडामा प्रत्येक वडा बजेट वडामा या टोली बनाए पर्ना जरूरी बा प्रत्येक वडामा एक टोली बनाख प्राथमिक उपचार कसिक कर्ना लघक उपचार केन्द्र कहाँ बा काठदारण कलसे काकरना कैख एक समिति जो बनाए पर्ना जरूरी बा दोस्रो समिति सरकार से स्थानीय सरकार से यी काम करक लाख हमन वार्षिक रूपमा कतरा पैसा चाहिँ कैख इस्टिमेट कर परी ऊ इस्टिमेट कैख ऊ पैसा उहाँ धर्ना सबसे पहिला त सापन काटे हे निडीह परल उफे मन निहिल दुनु बाट हुई परल सबसे पहिला वाकर लाख हाम्रा घरक आजर पाजर झपाछ निडीह हुई तर सकु जहन घरक अवस्था त बराबर नि रह ऊ बाट वडाक अध्यक्ष हन नगर प्रमुख हन थाहा रहन ऊ हुइलासे सबसे पहिला त सरसफाईको लागि बजे छुटे परी काकर कलसी उहाँ कुनका सरसफाई गर्न समय फेरि रहन केक्रो छ सात ठुल लड्का रहन केक्रो डाइकेल केक्रो बाबा केल बाटन ऊ अवस्थामा बिहान चार बजे से राति एघार बजेसम्म काम गरे बेर हामकन आपन लड़कन दिझा पका खवाई निसेकना डाइन फी बाट ऊ मेरिक अवस्था रहन मनी फी बाट ऊ हवर्से हाम्रो लेभल छुट्टै परल ओसैको घर सरसफाई आफै फेरि गाउँ घरमा काठी से खाना रिझाक खैना परिवार बाट उहाँकन काठी कहाँ धर्ना ऊ कोनोमा कहाँ साम बैठ ऊ कच्ची घरमा त क्वाठा क्वाठा ब्यारहन निरह घरम परल बिला कसिका टुम्ना हो राख बिला बनगेल कलसी का करना झोल फाङ्क सुटना हुन् झोल लगाखा सुटा बेल फेरि पक्की घरमा फेरि राख नेगना साँफीबाट ओसिन ब्याल म कसिन कसिन मेरी प्राथमिक बाद जान परत कैख सकु बाट उहाँकन जानकारी गराइ परत आवन विशेष कैख उहाँकन छाइ छावन जानकारी दिह परत का कर कलसी डाई बाबन काम कैख डटखर ख आइल रह खा पिख सुट लग्ल कलसी लड्काउ यहाँ कसी कर पर्था उहाँ कसिक कर पर्था कैख लड़का वहाँ अपना है फिर तैयारी कर लग्थ अत्रा काम शुरू अवस्था में कर सेगल कलसी फिर हो जाए एकदम जरूरी बा स्थानीय सरकार के कार्यक्रम स्थानीय सरकार के कार्यक्रम में पर पर्ना जरूरी बा वो काट स्याकल कलसे अस्पताल जस्ता को लघ लघनी हो तर प्राथमिक उपचार केन्द्र कहाँ ढलना ऊ चाहिए एकदम जरूरी बा
1: स्थानीय सरकार के ध्यान पुगाएकला का कर पर्ना जरूरी बा
3: त्यो चाहिँ हामी वडा अध्यक्ष ज्यूहरूसँग
6: स्थानीय सरकारको ध्यान पुगाएको लागि स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष ज्यूहरूसँग मजासे छलफल गर परल गाउँ घरमा स्थानीय अगुवा हुनु रह उहाँकन फेरि सहभागी गराइ परल उहीमा वडा वडामा यी कार्यक्रम गर परल सुरुमा चाहिँ एकदम करा बा वडा वडामा कार्यक्रम कहीँ खकेल जैना जरुरी बा नै त कलसी यी सफल गरेना करा बा काकर कि आज हाम्रो कर्ली दोस्रो जारक महिना आइल कलसी साबुनको कटाई कम हुई दोस्रो फिर गर्मीको महिना आए फेर साँप निकल्दा बेला उहाँ बिस्ता से कही उहोसे हमार कर काम बालुमा पानी दारस न होए जौन लेभलमा से हाम्रो काम सुरु गर्ल बाटी उही से उपर जैटी रह तर नागिरकना हिसाबले हाम्रो काम गर्न जरुरी बा
1: बजेट नन जरुरी बा यही न औपचारिकता देखेक लाग बजेट फेर नन जरुरी बा
3: बजेट नै छुट्याउनु जरुरी छ किनभने बरु धेरै नहोला
6: बजेट चाहिँ छुट्याइ पर्न जरुरी बा बिन ढ्युर नग्नी हुई तर सुरुवात गर्न जरुरी बा जहिले करबेल सचेतनाको कार्यक्रम जटरा घजाई ओट रह काकर कलसे सापन से बज्न सहज बा करानी हो हुक्रा खप नै कटनानी हो नि त जस्तो झपास बा हाम्रो घाँस काट गैल ब्याला च्याप्प पक्रली कलसे ऊ खटरा महसुस गर नि त ऊ त मही मारकला बाकना हुइल जस्तो कटना हुइल ऊ त आफ्नो डगर जाइ नि पनि त असिन असिन बार जस्तो हाम्रो टिना बारी हुइल गोभी बारी महुल असिन असिन घटना फेरि देख्ला ओसिन ठाउँमा जाइबेर फेरि तनिक चना खोख जाइ परल कुछु बाँकी कैख सोच विचार गर परल सरसफाई बा हाम्रो निकाल बाटी पानी चल्ल बाटी सकु देख पर्था तर फेरि कन ज्याला मनेको दिमाग कहाँ गिल रठा कहाँ सोच तिरना तिरा बारीमा जाइबेर फेरि ध्यान हिम्मत निरह स्याकट असिन बाटले फेरि हुइसक था
5: मैले
3: त अन्तिममा के भने यो कार्यक्रम असाध्यै
6: राम्रो मै अन्तिममा का कहटो कलसी यी कार्यक्रम बडो मजा लागल मही हन यी सुरुवात कलक म अपना हुकन ढिहोर ढिहोर धन्यवाद बा मै एउटा बाट का जोड दिएटु कलसी यी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ल कोर्से मही हन फन काकर आयत कलसी यी वन मन्त्रालयको योजना हो कि छैन हो तर उनी हो यी सकु जानका हो सकु मन्त्रालय हो सकु 3 करोड नेपालीनका सज्या हो कना हिसाबले जैलसी हुई यी मन्त्रालयका ऊ मन्त्रालयका कैख छुट्याइबे त नि अप्ठ्यारो बिठा यी वन मन्त्रालय केन ठरनानी हो खै शिक्षा मन्त्रालय सकु 2500 मन्त्रालय सकु मन्त्रालय हुँदा आफ्नो कार्यक्रम धर्क ग्रामीण समुदायमा स्थानीय सरकार मार्फत पुग्ले कलसे यी कार्यक्रम सफल हुई ओ हाम्रो सकु जहन फाइदा हुई ओ वातावरण चक्र निबिग्री वातावरण चक्र मजासी चलिकन महिला गत
2: धन्यवाद
0: एकदम महत्वपूर्ण पहल हो यही म WWF नेपाल रोटरी से मिलकर नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हाम्रा फ्रिडम अफ कर्ती रह कार्यक्रममा कहाँ ठे मिलाखा कर्ती रहमा निउले सिके र भविष्यमा गर्ने कार्यक्रम लेखन यहीन जन समुदायमा ढिउसे ढिउ सचेतना पुगेपछि मृत्यु दर कम गराइक्ला हाम्रासँग मिल्खन काम गर्न हाम्रा प्रतिबद्धता पल रहनेवा तर मजा काम शुरूआत हुबा वकरलाको रोटी लगायत सबको सरोकारलाई हङ्कन धन्यवाद
2: शुभकामना छ।
5: डाक्टर निर्मल रिजाल सर्पदंश अभियानका लागि रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन काकसिन जनचेतनामूलक अभियान काम गर्दैबा बटादिन
7: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनले
1: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन सन् 2019 काठमाडौँमा एक ठो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न रहला सर्पदंश विषयमा जहाँ चाहिँ विभिन्न मुलुकी विज्ञ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी थोक्रे अस्ट्रेलिया से युके से भारत बांगलादेश नेपाल सक्कु मुलुकका विज्ञ हुक्रे जुटका एक ठो सम्मेलन गर्न रही ऊ सम्मेलनका निचोड अन्त्यमा एक ठो निचोडका गले जनचेतनाक अभावकै कारणले धिर मनै सर्पदंशक जोखिममा पर्छ ऐसिन जनचेतना राहत कलेसे हुक्रे ओसिन सर्पदंशक जोखिम मनसे बचेसेकर सर्पदंश निहित कलेसे मृत्यु हुन सम्भावना फे कम हुने रह ओसिन मेरिक सन्देश सहित ऊ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ओराई जयकार आधारमा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन काठमाडौँ एक ठो परियोजना निर्माण गरल ऊ परियोजना चार वर्ष अभियानकै रूपमा काम हुइटिबा ऊ मध्ये मिरमिरिक जनहित जारी रेडियो सन्देश 11 ठोबा जौन मध्ये 5 ठो रोकथाम हन लक्षित कै खन करागिलबा कलेसे 5 ठो उपचार ओ ऊ मध्ये 1 ठो चाहिँ साफ पर्यावरण के अभिन्न अंग हुइत कन सन्देश सहित कबा कलेसे 11 एक ठो महत्वपूर्ण सन्देश काबा कलेसे साप काट डरले से का कर्न त कन एकदम महत्वपूर्ण ओहिमा कर पर्न काका होट कै खन ऊ बात ऊ सन्देश बुझैन कोसिस गर्लबा ओसिनके रेडियो कार्यक्रम बा सन्देश ओ रेडियो कार्यक्रम मुलुक भरका 41 ठो एफएम रेडियो मसे प्रसारण हुइना कर्था उही मस हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मसे फे यी सक्कु सामाजिक सन्देश हन सामाजिक सञ्जाल मसे फे जस्त फेसबुक मसे युट्युब मसे इन्स्टाग्राम मसे फे यी सन्देश पुगाई सेग्बी कलेसे विशेष कैख युवा हुक्रे जे सामाजिक सञ्जाल का प्रयोग कर्था वहाँ हुक्रे जागरूक हुई सकी कन धारणा हो उसीके पोस्टर बा पोस्टर फे दुनो प्रिंट करागिलबा एक और हमरे रोकथाम के संदेश देले बाटी कले से एक और उपचार के संदेश देले बाटी ईसक को 5 ठो भाषा मा नेपाली मा पर्लीबा ऊ बाहेक मैथली भोजपुरी अवधि ओ पश्चिम थारू भाषा मा बा अब मै लास्ट मा फे एक चो समझाई चाहतु हमार वेबसाइट www.snakebitenepal.org ई वेबसाइट सर्च करबी कले से मै आगे कलक सक्कु सामग्री फे भेटाई सिक्जै ऊ बाहेक सर्पदंश होख उपचार कराई जैना एन्टी भेनम सेन्टर का फोन नम्बर यी कहाँ हो कौन ठाउँमा बा वहाँको सम्पर्क मनैया के हो यी सक्कु बात यहीमा विस्तृत रूपमा दे गइबा ऊ वेबसाइटमा आकुर धुर चिज बा अनुसन्धान हुई न्युज पेपर अथवा पत्र पत्रिका छापा गैलक आर्टिकल हुई स्वास्थ्य मन्त्रालय हो विश्व स्वास्थ्य संगठनका सर्पदंश सम्बन्धी प्रकाशन यी सक्कु बात वहाँ भेटाइसेकजेत विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ता हुनको लागि यी वेबसाइट महत्वपूर्ण रहन गरल बा यी परियोजना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रोटरी इन्टरनेसनल को रोटरी फाउन्डेसन का नबा वाकर एक ठो ग्लोबल ग्रेन्ट ले सम्भव भइलक हो वहाँ हुकन फे हाम्रो ढेर धन्यवाद
5: अब हाम्रो सुनि सर्पदंश अभियानमा रोटरी कर्लक क्रियाकलाप का विस्तृत जानकारी आजुकी रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशमा आफ्न अमूल्य समय देख यी छलफलमा सहभागी हुनेलकमा हाम्रो विज्ञ हुक्रप्रति हार्दिक आभार तथा ढ्यू ढ्यू धन्यवाद आप सुनि यी जानकारी मूलक रेडियो सन्देश
8: मुर्गी
9: दाना देना जाला म काकर लक्ष्य खाजा के अपन
8: एकटो तपाबाका मुर्गी न फरक छ लक्ष्य से डुलेले से बखाकी आनो हारी छ त
9: तापन घिस्याई चलाई निउथी नै त अमन दत्त स्याकर बिहान घर भित्र आई लागि कलसी भगैदी
8: पारक भित्र पैटका मुर्गी मुवाडी वा खाडी कै भगाइ खोज्लक हो का
9: आरामा किरा फटिन्ना मुर साफ छिर निस्याकर कै खो फलामको जारी लगाएर बाप्त सप मुर्गी खेती पुगाइ देखी बिहान अप्ठारमा दाठी डुलेर बिना
8: हो बिना त का गर्न हो सप देख्छ कि डर लागेर बिना रहेछ देऊ सप त अपना घुम्का बारी ओत कलिन्छ
9: हाम्रो त्यो सापन चाहिँ डराइना नि भोली मुख्र थिए अमन चाहिँ डराइठ यदि क्यू जान अन्जानमा चलैला थियो प्रतिरक्षा करत लाग वा आफन बचाउ करत लाग साम दसना कर था
10: सापन से दूर रही सापन रिस नि लगाए वा नि जिस्के साप मने देख डरै छ नि चलाख दूर रहन छ साप नि दस्त तर हुक्र खैना फाज बाहिर निस्कि नै रहन घाँस काटा बेल ख्याल बेल ड्याङ्ग बेल छुबेर सेल मनै मही मारकलाकबाट कना सबस्क प्रतिरक्षा कना क्रम साप दस लाख रठ मनै सापन व्यक्ति कि मारकलाग रठ ओसीको कर बेल फेर साप दस लाख रठ
11: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँबाटै छ पत्ता लगाएको लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा। आजुक यी रेडियो कार्यक्रम सापन्से सह अस्तित्वमा रहकला व्यक्ति घर परिवार ओ समुदायक भूमिका महत्वपूर्ण हुनाबाट जानकारी सँग नेपाल सरकार वन मन्त्रालय स्थानीय सरकार से मिलकर साँप संरक्षण कर का कसिम कार्यक्रम सञ्चालन कर सेठा कना बातचीत फे सुन्दी यका सँग साँप पर्यावरण का अभिन्न अंग हुइट हिंक्रथे बाँच पाई पठा हिंकनहक पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका रना हुइला कोर्से सापन संरक्षण कर पठा कना जानकारी देती ऐना अठवारक और विषय प्रसंग लेख ऐना बाजा कर दे आज की प्रस्तुति मसे सहकर्मी संघर्या कनक संग मई पुष्पा के बिदा हुइटू नमस्ते।
1: ई रेडियो प्रस्तुति में विद्वान पहुना हुक्रे बटवैलक उहाँक निजी विचार मान्जिने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना तरफ से अभिव्यक्त हुइलक आधिकारिक विचार कैख माना निहुइ।
12: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा हो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका संग बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका सँगसँग विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लब हुकन्से जनहितका लागि प्रस्तुत।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दी भुवा जागिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आंसेकले कत्रा सुघर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: नरेश दादू मैं तो अपना फोन इतनी डरती आ गई है भौजी कहाँ बाटी
3: ओ गोन्दे में सुटल बाटी बाबू चोली न भरी
2: भौजी कहाँ से काटल अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनेल बाटी

0: तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना है ना
1: यहाँ पोली को कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आप ना हो
0: ना ते बाबूजी हमरा बाटी अपना है ना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा है ना जिनसे रेगी को ना रिजारू एम्बुलेंस ना समय लागे चीज था नगर के मोटरसाइकिल बाक लाची उन्हें बैठा कर भाजी है ना सरपर से उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
2: ये बेला तक खाना जात है दिया न्यू इच ना स्वयंसेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकार सम जरमेन कुछ थे खवाई नहीं हुई
3: सपुआ कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लास सपुआ कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक रुगा गरगहना घड़ी पेटी मुंडी बाकल से फफल करा दी गेरम्या अप्रैल से झन समस्या बिना हुए कोशिश गेरम्या न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपुआ कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए ध्वस्त खबर नाटक कठा असिक कर्ण से रक्त संसार में समस्या हुई सिक्ठा यहीं ले करबेल सपुआ दशलक शरीर का भाग काट कर फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पत्ता लगे लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संध्या 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने हुकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल हमारा पात्र और नेपाली पात्र में फेसिलिटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से असफल काम के निरंतरता नहीं हुई क्रम भंगता कल्पना प्रतिनिधि सभा के सभामुख डोर प्रसाद अरियल के कहे दर्शनकारी सड़क खंड में सुमो बोले ठोकलक 14 जना घाइते शंकुसभा में पहिरो 5 खबन चैनपुर सड़क अवरूद्ध ओ पश्चिमी प्रणाली सक्रिय वर्षा संतराई में तापक्रम बहना प्रतिनिधि सभा के सभामुख डोल प्रसाद अरियल संसद सरकार काम कलक निरंतरता से क्रम भंगता कटिया बढ़ पड़ना बटील बात अंतरव्यवस्थापिका सम्मेलन 2083 के शनिवार टीकापुर में उद्घाटन करना हुईटी सभामुख अरियल असीम बुटील बाट सभामुख अरियल विगत के निर्णय फिर कार्यान्वयन नई हुलक समीक्षा करके क्रम भंगता में जान पड़ना बुटील बाट वहां संघीय संसद सक्कू प्रदेश के सभामुख उपसभामुख उपस्थित हुईना कार्यक्रम नतीजा देह पन्ना वो दिलक उपलब्धि करना था पाए पन्ना के बुटील बाट सभामुख अरियल संविधान के 3 तह के सरकार के बीच समन्वय सहकार्य सह अस्तित्व के परिकल्पना करल संग राष्ट्र आगा बढ़ना आघ पुस्ता के अनुभव बलिदान के सम्मान करती जयंती पुस्ता के भावना संबोधन करके आघा बढ़ना आज की आवश्यकता हुई बुटिल बाट कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद धालके इनसे आघ सम्मेलन के कलक घोषणा में संघीय प्रदेश व्यवस्थापिका कर नई सकलो काम स्थानीय व्यवस्थापिका सुटलक कलक समीक्षा पूर्ण बुटिल बाट सुदूरपश्चिम के टीकापुर में सुरी हुईलक 11 अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनमा संघीय संसद सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश बाहेकी प्रदेश सभाकी सभामुख उपसभामुख र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुख सभाके सदस्य हुक्र संघ प्रदेश व्यवस्थापिका सचिव हुक्र सहसचिव हुक्र सुदूरपश्चिम स्थित सुरक्षा संयन्त्रकी प्रमुख र सहभागी हुल रहे। दक्षिणकाली सड़क खण्डमा सुमो बोलेरोजी एक आपसमा ठोकलक 14 जना घाइटी हुलबाट मकवानपुरके इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 3 धारा ढोली स्थित दक्षिणकाली सड़क खण्डमा हेटोडा मसे काठमाडौँतर्फ जाइती कलक नायक ज 7207 नम्बरके सुमो विपरीत दिशातर्फ आइटी कलक बीएएस 9768 नम्बरके बोलेरो एक आपसमा ठोकल रह दुर्घटनामा बोलेरो चालक सहित दुनु सवारी साथमा सवार 14 जना घाइटी हुलबाट घाइटी मध्ये 4 जना के अवस्था गम्भीर 10 जना के अवस्था मध्यम रलक प्रहरी जनेलबा सक्कु घाइते उद्धार गरी उपचार केला काठमाडौँबाट सुमो चालक थप अनुसन्धान केला प्रहरी नियन्त्रणमा लिलबाट खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वन्तिर विसामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प

0: तत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिलाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
2: सभामुख डोलप्रसाद अर्याल कानून निर्माण करलक तीन तहके सरकारके बीच समन्वय एवं सहकारी पूर्णाबुटीबाट अन्तर्व्यवस्थापिका मंच टीकापुरमा आज आयोजना कलक अन्तर्व्यवस्थापिका सम्मेलनमा महासंहिता कार्यान्वयनमा संघीय संसदको प्रदेश सभाकी बीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय सहको सहकारी पूर्णाबुटीबाट तीन तहके सहकारी बीचके समन्वय र सहकारीमा नै बस्नाकै कानून निर्माण हुनुपर्नमा जोड़ दिती। सभामुख बुटीलोबाट तीन तहके सरकार बनेना कानून नै बस्नाकर्के काम गर्नमा प्रतिबद्ध बाटोका कि सकुझान समन्वय सहकारी करके कानून निर्माण बढ़े बाटुकै कि आपछि समन्वय सहकारी के जनता अपेक्षा बुझके काम गर्ना वातावरण बन्न बा कानून निर्माण हुन लक्षित वर्ग केन्द्रमा धरपर्ना सभामुख आर्य जोड़ दिनबाट कानून के कार्यान्वयन करपर्ना वर्ग कानून निर्माण हुन पाछ के लिख थाहा पहिला कार्यान्वयनमा चुनौती देख्न गएर कति उहाँ लक्षित समूहसँग समन्वय सहकारी करके के लिख कानून निर्माणमा करपर्ना बुटिलोबाट सभामुख कार्यालय संहिता सिंह दरबारके अधिकार गाउँ गाउँमा पुगाके उले सेफे ओकर अधिकार अभिन सिंह दरबार बाहिर जाइ सक्न नै सक्ल बुटिलोबाट अभिन हाम्रा जनता देहपर्ना अधिकार गाउँ गाउँमा पुगाई नै सक्ल खुटिका कि उहाँ बटेलबाट सहकारी राष्ट्रिय सभाकी अध्यक्ष नारायण प्रसाद अर्याल स्थानीय प्रदेश संघीय सरकारकी समन्वय नै पुग्लक गुनासो संघीय संसद सम्बन्धन करके आँखा बढ़े पूर्णमा जोड़ दिलबाट संघीय आवश्यक कानून नै बनेना प्रदेश ओ स्थानीय तह समस्या हुलक स्वीकार गर्ती उहाँ संवैधानिक अधिकार सहित प्रदेश स्थानीय तह काम गर्न वातावरण बनाइपर्ना बुटिलोबाट संघीय कानून निर्माणमा कलक ढिलाइकी प्रदेश सरकार आवश्यक कानून बन्ना हो कार्यान्वयन गर्न सेकल नहिटिकै उहाँ बुटिलोबाट जनता भावना आत्मसार गति लोकतन्त्र मजबूत बनाइनातर्फ तीनथो तहकै भूमिका महत्वपूर्ण रहलक उहाँकै कथन रह कानून निर्माणमा संघीय संविधान बढ़ी तदारूपकता देखिन आवश्यक लगकटी उहाँ बुटिलोबाट उहाँकै कहाई द्रुत गतिमा कानून निर्माणकै काम गरल नै हो ओकर कारण खोज्न जरूरी बाकी जनता हाम्रै पुस्क कर्णा पठेल नै हुटिकै सम्मेलनमा संघीय संसद दुनु सदन हो साठो प्रदेश सभाकी सभामुख सहभागी रहे सम्मेलनमा कालफे सम्पन्न हुन बा। सुंखु सभाके पाँच खपन नगरपालिका चैनपुर नगरपालिका जोड्न सडक अवरूद्ध हुला पहिरो पाँच खपन नगरपालिका अन्तर्गत बिहिबार फैसी चोक पिपल डाँडा सडक खण्ड अवरूद्ध हुल गैलक रातकै लगातारकै वर्षासँग अहिलक पहिरो चैनपुर पाँच खपन नगरपालिका जोड्न बिहिबार भैसी चोक पिपल डाँडा सडक खण्ड अवरूद्ध हुलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राज बंशी जानकारी दिलबाट उहाँके अनुसार पहिरो पाँचपन चैनपुर खडके खण्डके गरी 15 मिटर सडक बगैलबा कल्लेदी क्षेत्रमा अहिलक चिङछुवा खुल्वाके बरहेके सडक भारी क्षति पुगेल पाछ आगमन पूर्ण रूपमा बन्द हुलक प्रहरी निरीक्षक राज बंशी बुटिलोबाट उहाँके अनुसार वर्षाके कारण पाँच खपनके चुङखुरूङ तर्फके भागमा भारी पहिरो खसल पाछ सडक पूर्ण रूपमा बन्द हुइलबा पहिरोके कारण आज बिहान सी सवारी साधन सञ्चालन हुन नै सकल हो सडक निर्माण जारी रहल बेला खुल्वामा अहिलक बढ़ियाकै ठाउँ ठाउँमा क्षति पुगेलक प्रहरी निरीक्षक राजवंशी उल्लेख कलबाट बढ़ियामा कमजोर मलक भिरालो जमिन खसलक सड़क पूर्ण रूपमा अवरूद्ध हुल सड़क खुल्ने विषयमा स्थानीय तह निर्माण कम्पनी तथा सरकार हुलक निकायसँग समन्वय हुटी प्रहरी जानेर मौसम अनुकूल हुलमा छ पहिरो पञ्चायत सड़क आशय सञ्चारमा लड्न प्रयास हुटी रहल बा। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि विष्णुतिर विशाल मुदा क्रेडियो टिकापुर एफएम।
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
4: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
3: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
4: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप

0: मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
1: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
0: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
1: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
0: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
1: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
0: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
1: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
0: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
1: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72
2: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
3: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
2: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
3: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
2: अब त म ढुक्क
4: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
3: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
5: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
6: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
7: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा मुलुकमा हाल पुल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापी रेखा ट्रफ तथा स्थानीय वायुकी आंशिक प्रभाव लग देशकी धेरै क्षेत्रमा मौसम बदली हुनासँग कथपि ठाउँमा वर्षा हुन सम्भावना बाल जगथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकै अनुसार हाल देशके कोशी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश लगायत देशकी हिमालय पहाड़ी भुवाकी कुछ ठाउँमा तथा तराई भुवाकी एक दुई ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षा हिमपातकै सम्भावना रहलबा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी हो कर्णाली प्रदेशकै कुछ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहाड़ी भागकै एक दुई ठाउँमा हल्का से मध्यम वर्षा हुटिरहल महाशाखा जनिलबा अस्तगरकै मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी हो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तराईकै कुछ ठाउँमा टाटु लहर चल्न सम्भावना बा शनिबारकै रातकै कोशी प्रदेश सहित देशकी हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारणतया बद्री मधेस प्रदेश बागमती गण्डकी प्रदेशकै तराई भूभागमा आंशिक बद्री लग्न हो बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहन बा महाशाखाकै आज दिनकै कोशी प्रदेश सहित देशकी हिमाली तथा पहाड़ी भेगमा साधारणतया बद्री रहन तथा कुश तथा अन्य तराई भेगमा साधारणतया बद्री रहना तथा बागमती गण्डकी प्रदेश पहाड़ी भागकी एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षा औ हिमपातकी सम्भावना लग्जन बा टाटु लहरकै प्रभावमा से बस्ना दिनकै समयमा सेकलसम्म घरभित्र रहन हो जो ठाउँमा बस्न अनावश्यक रूपमा घाममा बाहिर नै निक्लन हल्का तथा सुतीकै कपड़ा लगेन बाहिर निक्लसे टोपी वा छाता के प्रयोग गर्न तथा प्रशस्त मात्रामा पानी झोल पदार्थ सेवन गर्न मौसम विभागको सुझाव दिलबाट तराई क्षेत्रमा तापक्रम बढ़नाहुलक आवश्यक सतर्कता अपनाइन तथा मौसम विभागको सुझाव पालना गर्न महाशाखा सर्वसाधारणमा अनुरोध गर्नुबाट यी समाचारसँग खोज खबर बढाइ दिनासे पहिले खबरकी मुख्य शीर्षक फेर्स एकचो असफल कामकी निरन्तरता नै हो कि क्रमभङ्गता करपना प्रतिनिधि सभाकी सभामुख डोलप्रसाद अध्यर्की कहे दक्षिणकाली सड़क खण्डमा सुमो बोलोरो ठोकलक 14 जना खाइदे संखुवा सभामा पहिरो पास खपन चैनपुर सड़क अवरूद्ध उपश्चिमी प्रणाली प्रशासन त्रयमा तापक्रम बढ़ना लिटा बुकला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटी अब अकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदा हिटू एक पास छह बजे की खोज खबर सुनना से भी सामुदायिक रेडियो टीका पूरा फिल्म सुनती रवि राम राम
8: हमरा सहयोग कैखल डेन्टी बाटी देन मोटरसाइकल घुमाकर धरने करी ना
9: बैठा बैठा रम्याना रसा रसा मोर पास बैठाई वो एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम सुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश विशेष ना फुला को से पासा से पकड़ का बैठा पड़ता का
10: ब्रह्म्याना अगर भी न कही का मई पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना देश मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पडंसक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजना सजिलो हुई बा
9: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक रखे बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेरक सुझा कर लगभग एंटी भेनम महिला उपचार केन्द्र में ले जाये पड़ता
8: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वान लगा करके ला दे
9: वहां न कतलक सपा का फोटो खींचला बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
10: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई
11: सफ डस दारण कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटी वेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
12: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
13: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
3: घर कहिया सिर जाइब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
14: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
15: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
16: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
17: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी भुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अजी गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक सीकापुर प्रोप्राइटर पेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864 41208 ओ 9846 39261
2: हरेक भ्रूणले जीवितै जन्म नपाउने जन्मिसकेपछि अभिभावकबाट संरक्षण पाउने आफ्नो सर्वाङ्गीण विकास गर्न पाउने र परिवारका हरेक कार्यमा सहभागी हुन पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो हरेक बुबा आमा अभिभावक शिक्षक र वयस्कहरू यस बारेमा सचेत रहौ
3: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नसके स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग लिन सकिन्छ।
1: सुर्खीजन्य पदार्थ होइन, स्वास्थ्य रोजौं।
2: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: उए सबै पेपर अरुको सकिया हो
5: सकियो
4: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
5: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकम का अफिस ड्राइभर ब्लक गरी भर आयौ
4: उए बैंकमी
5: बैंकमी
4: हाँ
5: ता क्या अद्दु पड़े
4: त्यो त अद्दु पड़ेछ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई नै जानकारी दिनु पड़ेछ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ
5: सतर्क रहौ ठगी बठै बचौ
6: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमी जारी सन्देश
7: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
8: तिम्रो मेरो सबैको रातो रगत छ यहाँ तिम्रो मेरो सबैको रातो रगत छ यहाँ तर खण्ड खण्डमा किन जगत छ यहाँ तर खण्ड खण्डमा किन जगत छ यहाँ मूल्य नै के छ यहाँ खुन अनि पसिनाको मूल्य नै के छ यहाँ खुन अनि पसिनाको बसी बसी खानेकै अति बढत छ यहाँ बसी बसी खानेकै अति बढत छ यहाँ काम छ अनितिको मुखमा छ वेदशास्त्र काम छ अनितिको मुखमा छ वेदशास्त्र अधर्मी र कुकर्मीकै भाव भगत छ यहाँ अधर्मी र कुकर्मीकै भाव भगत छ यहाँ बेरोजगार छ युवा रोजगारी छ विदेशमा बेरोजगार छ युवा रोजगारी छ विदेशमा नक्कली गणतन्त्रको भित्री परत छ यहाँ नक्कली गणतन्त्रको भित्री परत छ यहाँ तर खण्ड खण्डमा किन जगत छ यहाँ गुण्डाराज फस्टाउँदैछ हराउँदैछ निसाफ गुण्डाराज फस्टाउँदैछ हराउँदैछ निसाफ पैसाको तराजुमा सत असत छ यहाँ पैसाको तराजुमा सत असत छ यहाँ तर खण्ड खण्डमा किन जगत छ यहाँ तिम्रो मेरो सबैको रातो रगत छ यहाँ रातो रगत छ यहाँ यस्तै यस्तै मीठा मार्मिक गजलहरू सुन्न यहाँहरूकै प्रिय कार्यक्रम मधुबन यहाँहरूकै प्रिय रेडियो स्टेशन समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्जको विद्युतीय तरंगबाट र www.tikapureFM.org र मोबाइल एप टीकापुर एफएमबाट पनि विश्वभर एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ हरेक बुधबार साँझ 8:10 देखि 8:45 सम्म सुन्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम मधुबन

0: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
1: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
3: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423759।
4: काली कर्णाली सांस्कृतिक समाजको साधारण सभा तथा नेउला खेल कार्यक्रम हुने बारेको सूचना काली कर्णाली सांस्कृतिक समाज टिकापुर कैलालीको वार्षिक उत्सव समारोह तथा लोक सांस्कृतिक नेउला खेल कार्यक्रम तपसिलको मिति स्थान र समयमा हुने भएकाले सम्पूर्ण आजीवन सदस्य साधारण सदस्य तथा संस्कृति प्रेमीहरूको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। पहिलो वार्षिक उत्सव तथा दोस्रो साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 23 गते दिउँसो 3 बजे। सभा सञ्चालन हुने स्थान टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ब्लक नम्बर 15 स्थित खुला स्थल। नम्रता जैसी दीपा साउट लगायतका कलाकारहरूको उपस्थितिमा नेउला खेलको समय बेलुकी 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म। दोस्रो दिन लोक नेउला सांस्कृतिक खेल सञ्चालन हुने मिति 2083 जेठ 24 गते समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। स्थान ब्लक नम्बर 15 स्थित खुला स्थल। अध्यक्ष पदम बहादुर थापा छेत्री काली कर्णाली सांस्कृतिक समाज टिकापुर।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।